ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

तेरी भक्ति का वरदान है जो कमाए वो धनवान है बिन की नारी की कश्ती है वो रीवा तुझसे जो अनजान है यूं तो मूषक सवारी तेरी सब पह पहरा धारी तेरी पाप की अंधी आलाको हो कभी ज्योति ना हारी तेरी It's the boon of devotion for you. Who earns this devotion is rich. He is a boat with no shore who doesn't know you. A mouse

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: जय सीताराम, दिस इज पंडित मुनिलाल महाराज इनवाइटिंग यू टू जॉइन मी फॉर द प्रोग्राम आत्मवाणी एवरी सैटरडे फ्रॉम 8 टू 9 AM विद इंस्पिरेशनल मैसेजेस, विजडम ऑफ आवर एंशिएंट ट्रेडिशन, अपलिफ्टिंग भजन्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइन सोल विद इन। टुगेदर Let us raise our spiritual consciousness to make this world a true heaven. For Dharma, Pandit Munilal, Jai Sitaram, Jai Sitaram.
2: Sitaram, I am Pandit Videsha Vyasa, specially inviting you to begin your Sunday morning with devotion and divine wisdom on Vyas Katha from 6 to 8 a.m. right here on Radio Jagriti 102.7 FM. Vyas Katha, a program filled with pure bhakti, soul-stirring bhajans, and divine kathas that will uplift our hearts and bring us all closer to the divine. Looking forward to being in your company each and every Sunday morning from 6 to 8 a.m. right here on Radio Jagriti 102.7 FM. Jai Shri Ram.
3: You're listening to Radio Jagriti 102.7 FM.

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचं चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: If you are easily angered, then you are easily manipulated. Think before you act. A message courtesy, Bhagwan Singh's Port of Spain and Chaguanas, Building Trinidad and Tobago for a Better World.
1: शनि शब्द की ध्वनि कान में पड़ते ही अज्ञानी मनुष्य भय से कांप जाता है। उसे उसकी 19 वर्ष की महादशा, साढ़े साथी और ढैया का स्मरण हो आता है, जिसके कारण उसका भय निरंतर बढ़ता ही जाता है। किंतु जो शनि की आराधना, पूजा, अर्चना तथा भजन में अनुरक्त व्यक्ति हैं, उन पर शनि की महती कृपा होती रहती है। वे सभी सुख समृद्धि से आनंदित होते हुए शिव धाम को प्राप्त करते हैं। कहते हैं, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जब अपने 10वें 11वें स्थान पर होता है तो व्यक्ति की उन्नति होती है, किंतु अन्य स्थानों से शनि की 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि घातक होती है। अतः शनि सदैव पूजा के योग्य हैं। आओ हम शनि की कृपा प्राप्ति के लिए शनि का ध्यान करें, पूजा करें, भजन और मनन करें। ओम शं शनिश्चराय नमः।

0: आपका धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: कैसी लग रही हूँ?
2: मेरी लग रही है
3: चांदी, सॉरी यार, प्लीज सुन, गलती हो गई यार, प्लीज ओपन द डोर यार, प्लीज चांदी सुन, सुन दरवाजा खोल यार।
4: चांदी बहुत रेगुलर है यार, वो
1: इसलिए पसंद है मुझे।

चंद्र की जय। लाइक दिस भगवान श्री राम गोस्वामी तो स्टार्स जी माय फ्रेंड्स राइट्स वेरी ब्यूटीफुली एंड ही सेज एज ही कमेंट्स दिस ब्यूटीफुल कथा दिस इवनिंग गोस्वामी तो स्टार्स जी राइट्स वेरी ब्यूटीफुली।